0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संत प्रकरण विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन में संत प्रकरण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कैथोलिक कलीसिया में संत घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। संत घोषणा की प्रक्रिया चार चरणों में होती है। विभाग उम्मीदवार की शहादत या विरोचित सद्गुणों की जांच करने में उनसे जुड़े धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्षों की मदद करता है। साथ ही उम्मीदवार के विश्वासी जीवन और उसके माध्यम से हुए चमत्कारों की जांच करता है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग के प्रीफेक्ट पोप के समक्ष आज्ञाप्ति पेश करते हैं, ताकि वे उसे सभी विश्वासियों द्वारा सम्मान दिए जाने के लिए कलीसिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। संत प्रकरण विभाग का काम है संत घोषणा के लिए उम्मीदवारों के जीवन की जांच करना, उनके स्वभाव में सुसमाचार की विशेषताओं को खोजना, ताकि हर ख्रिस्ती उन्हें भरोसेमंद और सबसे बढ़कर अनुकरणीय गवाह के रूप में देख सकें। किसी संत घोषणा के पीछे एक वफादार सामूहिक कार्य होता है जो कभी कभी दशकों तक चला जाता है। वर्तमान में संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट हैं कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो, जबकि सचिव महाधर्माध्यक्ष फाबियो फाबेने हैं। सन 1969 में संत पापा पॉल छठवें ने प्रेरित संविधान साक्रारीतुम कांग्रीगासियो के साथ दिव्य उपासना और संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना की थी और उनके बीच पौत्र संस्कारों के धम्म संघ के कामों को बांटा था। 1983 के प्रेरित संविधान दिवीनुस पेरफेक्सियोने मजिस्टेर के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषणा के कारणों की प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया और धम्म संघ की संरचना में बदलाव लाया, जिसे एक पर्यवेक्षक दिया गया जो ईश सेवकों की संत घोषणा की देखरेख करे। इसके बाद 1988 के प्रेरित संविधान पास्टर पोनुस के साथ इसका नाम बदलकर संतों के मामलों के लिए स्थापित धम्म संघ कर दिया गया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ पोप फ्रांसिस ने इसका नाम संत प्रकरण विभाग कर दिया और 2025 के जुबली के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने विभाग के अंदर नए शहीदों विश्वास के साक्ष्यों के आयोग का गठन किया, ताकि उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जा सके जिनमें दूसरे ख्रिस्त समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ख्रिस्त को मानने और उनके सुसमाचार की गवाही देने के लिए अपना खून बहाया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में बताया गया है, यह विभाग ईश सेवक की धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया की देखरेख करने, शहादत या वीरतापूर्ण सद्गुणों की जांच में विशप की मदद करने या किसी कैथोलिक विश्वासी के जीवन और चमत्कारों की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो ईश सेवक को चुना जाता है, जिसके लिए एक सच्चे विस्तृत और पक्की पौत्रता की जरूरत होती है, यानी यह आम राय कि उसका जीवन सरल ख्रिस्त सद्गुणों से भरपूर और ख्रिस्त समुदाय के लिए फायदेमंद था। 1983 में लाए गए संतों के मामलों के नए नियम ने धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया के समय को काफी कम कर दिया है। हालांकि संत घोषणा की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है। अगर ये मामला सकारात्मक हो तो मामला विभाग के सदस्यों, कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों के आम सत्र में जाता है। आखिरी फैसला पोप का होता है, जिनकी मंजूरी से प्रीफेक्ट अलग अलग मामलों को सौंपता है। संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना के बाद से इन 56 सालों के आध्यात्मिक एवं प्रेरित संतुलन में 2020 तक 3,300 धन्य घोषणा और 1,479 संत घोषणाएं हुए हैं। हर साल आमतौर पर हर महीने दो आम सत्र होते हैं और हर एक में तीन या चार मामलों की जांच होती है। इस तरह एक साल में 70 से 80 मामले निपटाए जाते हैं। ईश प्रजा के बीच पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए लोकप्रियता के कारण धम्म प्रांत में जांच शुरू होती है। रोम लाए जाने के बाद एक पर्यवेक्षक को पोस्टुलेटर का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि वह धम्म प्रांत में संग्रहित सबूतों का सारांश तैयार करे, जीवन की कहानी लिखे और ईश सेवक की पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए उनकी तुलनात्मक ख्याति के साथ साथ शहादत का वर्णन करें। इस स्थिति का अध्ययन ईश शास्त्रों के एक दल द्वारा किया जाता है और यदि पुराना मामला हो जिसमें उम्मीदवार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है तो इतिहासकारों के एक कमीशन द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर उनकी राय सही होती है, फाइल को विभाग के कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों द्वारा आगे की जांच के लिए जमा किया जाता है।
अगर मंजूरी मिल जाती है तो पोप ख्रिस्त सद्गुणों या शहादत अथवा ईश सेवक के जीवन के समर्पण पर आज्ञाप्ति जारी करने की मंजूरी देते हैं। इस तरह वे आदरणीय बन जाते हैं। धन्य घोषणा संत घोषित करने की दिशा में बीज का चरण है। अगर उम्मीदवार को शहीद घोषित किया जाता है तो वे तुरंत धन्य हो जाते हैं, अन्यथा उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना से वे चमत्कार को मान्यता मिलनी चाहिए। चमत्कार पर ईश शास्त्र परामर्श के बाद पोप संबंधित आज्ञाप्ति को मंजूरी देते हैं। धन्य को संत घोषित करने के लिए उन्हें दूसरे चमत्कार में असरदार प्रार्थना का श्रेय मिलना चाहिए। धन्य घोषणा और संत घोषणा एक कार्तिक विश्वासी से जुड़ा है जिसने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद पौत्रता, शहादत या अपने जीवन के समर्पण के द्वारा प्रसिद्धि पाई हो। श्रोताओं, रवि पारे कार्यक्रम के अंतर्गत संत प्रकरण विभाग पर संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका पलटती बाजी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने ज्ञान, धन, संपदा, रंग रूप और सुंदरता पर बहुत ही घमंड होता है। अपने आगे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। शादी के लिए लड़की देखने गए तो लड़की में कुछ ना कुछ कमी निकाल करना पसंद कर ली। यही बात लड़की के लिए भी है। यदि शादी ना करना चाहे तो लड़के में नुक्स निकाल कर खाली हाथ लड़के को वापस भेज दिया। कुछ लोगों को दूसरों का उपहास करना और उनको नीचा दिखाने में आनंद आता है। यदि आप भी लोगों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं तो इस बुरी आदत को बदल लें, क्योंकि जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। बाजी पलटने में समय नहीं लगता। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका पलटती बाजी।
1: और क्या कर रही है मेरी बहना?
2: और क्या करना है पवन भैया, कॉलेज खुलने में अभी 15 दिन और हैं, सो टाइम पास कर रही हूँ।
1: तूने इकोनॉमिक्स में एमए तो कर ही लिया है, अब कॉलेज में किस विषय में एडमिशन लेना चाहती हो तुम?
2: अब मैं फिलॉसफी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और फिलॉसफी में एमए करना चाहती हूँ।
1: लो बताओ, तुम आगे बढ़ना और पढ़ना भी चाहती हो तो किस विषय में? अरे जमाने के साथ चलो प्रीति, जमाने के साथ।
2: क्यों, फिलॉसफी में आगे बढ़ने में क्या बुराई है? जीवन और संसार के दर्शन के विषय में अपना अपना ज्ञान बढ़ाने में आखिर बुराई ही क्या है?
1: बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही बढ़ेगा और वो ज्ञान तुम्हारे किस काम आएगा प्रीति?
2: क्यों भैया, क्यों किसी काम नहीं आएगा? जीवन में दर्शन का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है।
1: देखो, अगर तुम मेरी बात सुनो तो कंप्यूटर वगैरह सीख लो और कुछ सोचो, तुम्हारे काम आएगा। ये दर्शन शास्त्र वगैरह जैसे सब्जेक्ट तो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं।
2: क्या पवन भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला ज्ञान पाने और ज्ञान बढ़ाने का भी कोई विषय आउट ऑफ फैशन होता है क्या?
1: लेकिन कुछ नया करने और नया सीखने में आखिर बुराई ही क्या है प्रीति? अच्छा प्रीति, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ये तुम्हारे मनपसंद विषय पढ़कर आगे क्या करना चाहती हो?
2: देखो भैया, आपको एक बात तो मैं साफ बता दूं कि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करने वाली हूँ।
1: फिर क्या करोगी तुम?
2: इतना तो तय है कि मैं नौकरी के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी।
1: तो मतलब ये कि नौकरी करने के बजाय तुम शादी करना अधिक पसंद करोगी?
2: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
1: अरे जब तुम्हें शादी ही करना है तो फिर ये आगे पढ़ने का झंझट क्यों?
2: तो आगे और पढ़ने में बुराई भी क्या है?
1: मेरा मतलब है कि जब तुम्हें नौकरी वगैरह नहीं करना है तो सीधे अपने किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लो।
2: समय आने पर वो भी कर लूंगी भैया।
1: मगर मैंने तो अभी तक सिर्फ यही देखा है प्रीति, कि जब भी कोई लड़का तुम्हें देखने आता है तो सारी रस्म पूरी होने के बाद पता चलता है कि तुमने लड़के को तो नापसंद कर दिया है।
2: पवन भैया, अब अगर लड़का नापसंद होगा तो नापसंद ही तो किया जाएगा ना।
3: बेटी, अगर इस दुनिया में तुम लोगों में कमी ढूंढने जाओगी तो तुम्हें सभी लोगों में कोई ना कोई तो कमी मिल ही जाएगी।
2: अब कमी है या होगी तो मिलेगी ही पापा।
1: सुना पापा आपने, आपकी लड़की का क्या कहना है?
3: देखो बेटी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी या गलती ना हो।
2: कोई तो ऐसा होगा ना पापा?
3: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, पूरा हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो।
1: पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर तुम दूसरों की गलतियां ढूंढती रहती हो। क्या तुम में कोई गलती नहीं है? क्या तुम एकदम परफेक्ट हो?
3: पवन बिल्कुल सही कह रहा है बेटी, हमें दूसरों में कमी या गलती देखने की बजाय पहले अपने आप में ही हमें इन अवगुणों को खोजना चाहिए, उससे दूर कर फिर औरों में हमें कमी ढूंढना चाहिए।
2: मगर शादी करके मुझे जीवन भर उसके साथ रहना है, तो क्या मैं अपनी पसंद का ध्यान भी ना रखूं?
3: वो भी तुम्हें एक सीमा तक ही रखना चाहिए बेटी। और फिर आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करती? मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो और उसमें मेरी मदद करो बेटी।
4: प्रीति, आओ आओ।
2: और क्या कर रही हो?
4: अरे ये बहुत दिनों से एक सलवार सूट काट कर रखा था, मैंने सोचा आज बैठकर सिल ही डालूं, पहनने को एक और सूट हो जाएगा।
2: हाँ यार, तुम्हारा ये अच्छा है, अच्छी कला सीख रखी है तुमने, टाइम का टाइम पास हो जाए और चीज की चीज तैयार हो जाए।
4: हाँ वो तो है। और सुनाओ कहाँ निकल पड़ी थी तुम?
2: कहाँ क्या निकल पड़ी, तुम्हारे पास ही तो आई हूँ यार।
4: चलो फिर आज दिन भर बैठकर यहीं खूब बातें करेंगे।
2: अरे नहीं यार, मैं दिन भर तो नहीं रुक पाऊंगी।
4: क्यों?
2: दरअसल मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ।
4: बोलो क्या काम है?
2: काम क्या है, वही ढपली वही राग। कल मुझे कोई लड़का फिर देखने आ रहा है।
4: अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कब आ रहा है वो?
2: वही शाम को।
4: और प्रीति तुम अब सीरियस हो जाओ हाँ, अगर लड़का सचमुच ही हर तरह से अच्छा हो तो मुझे ना मत कहना।
2: यार मेरी, तुम भी क्या बात कर रही हो, यही तो उम्र है मस्ती करने की और मजे लेने की, तो लेने दो जरा। शादी का क्या है, वो तो करनी है एक दिन।
4: कब कर लोगी तुम?
2: कर लेंगे यार।
4: देखो प्रीति, मेरी बात अलग है, मैंने तो जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया है, मगर तुम तो शादी कर लो और यूं देखने आने वाले लड़के को परेशान करना बंद कर दो।
2: तुम भी क्या बात करती हो यार मेरी।
4: क्यों?
2: अरे जब मुझे लड़के को पसंद और नापसंद करने का हक है तो मैं अपने हक का इस्तेमाल क्यों ना करूं?
4: लेकिन तुमने तो अपने इस हक को अपनी मस्ती और अपने मनोरंजन का हथियार बना रखा है।
2: अरे तो इसमें बुराई क्या है यार, मजा आता है जब कोई मुझसे शादी के ख्याली पुलाव पकाता है और उसमें अपनी नापसंदगी का मसाला डालकर उनकी बाजी पलट दिया करती हूँ मैं।
4: लेकिन कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है बेटा।
2: तुम सब छोड़ो यार, और ये बताओ तुम कल शाम को आ रही हो ना?
4: नहीं यार, कल मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है।
2: तो फिर ठीक है, मैं परसों तुमसे मिलकर पूरा आंखों देखा हाल बयान करती हूँ। ओके
4: ठीक है। आओ प्रीति आओ।
2: क्या कर रही हो?
4: कुछ नहीं, यूं ही बैठी थी। हाँ क्या तुम्हें कल लड़का देखने आया था ना, क्या हुआ उस मुंह दिखाई का?
2: अरे बात क्या बननी थी यार, छोड़ो।
4: अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कल तुम्हें मजा नहीं आया, या फिर तुम्हें उस लड़के को परेशान करने का मौका ही नहीं मिला?
2: इस बार मौका मुझे नहीं, सामने वाले उस लड़के को मिला था।
4: क्यों, ये क्या बात कर रहे हो तुम?
2: हाँ मेरी, मेरे पवन भैया, पापा और तुम बिल्कुल ठीक कहा करते थे।
4: क्या ठीक कहा करते थे? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम्हें हुआ क्या है?
2: कल मेरे साथ वो हुआ है मेरी, जो अब तक मैं दूसरों के साथ करती आई हूँ।
4: मतलब उस लड़के ने?
2: हाँ उस लड़के ने मुझे नापसंद कर दिया। मुझे ये बताओ मेरी, मुझमें उस लड़के को क्या कमी नजर आई होगी?
4: ये तो तुम्हें बिना समझाए भी सब कुछ समझ सकती हो प्रीति। आज तक तुमने दूसरों को नापसंद करके परेशान किया है, आज किसी और ने तुम्हें नापसंद करके तुम्हें परेशान कर दिया।
2: जब मैं उसे पसंद ही नहीं थी तो फिर उसने मुझसे ऐसे सवाल जवाब ही क्यों किए कि मुझे उससे उम्मीद बनने लगी थी।
4: तुम्हें उससे उम्मीद बनने लगी थी, मतलब तुमने?
2: हाँ मेरी, मैंने उसे पसंद कर लिया था मगर उसने मुझे नापसंद कर दिया। अब मुझे उन नापसंद किए गए उन लोगों के दुख का एहसास हो रहा है।
4: देखो प्रीति, पसंद नापसंद तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार करना दूसरी बात। बाइबल में लिखा है कि तुम जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी उनके साथ करना चाहिए।
2: सच है, जो जैसा जिसके साथ करता है उसके साथ भी वही होता है। मैं दूसरों की बाजियां पलटा करती थी।
4: दूसरों को परेशान करने और उनके मजे लेने वालों के जीवन में बाजियां ऐसे ही पलटा करती हैं प्रीति, इसलिए किसी को परेशान करने से पहले, किसी की बाजी पलटने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।
2: तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी।
5: पलटती बाजी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, पूजा केलकर, विजय पंडित और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
6: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के संत प्रकरण विभाग की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं।

वैटिकन में संत प्रकरण विभाग एक ऐसा विभाग है जो कैथोलिक कलीसिया में संत घोषणा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। संत घोषणा की प्रक्रिया चार चरणों में होती है। विभाग उम्मीदवार की शहादत या विरोचित सद्गुणों की जांच करने में उनसे जुड़े धर्म प्रांत के धर्म अध्यक्षों की मदद करता है। साथ ही उम्मीदवार के विश्वासी जीवन और उसके माध्यम से हुए चमत्कारों की जांच करता है, जिसकी मंजूरी के लिए विभाग के प्रीफेक्ट पोप के समक्ष आज्ञाप्ति पेश करते हैं, ताकि वे उसे सभी विश्वासियों द्वारा सम्मान दिए जाने के लिए कलीसिया के सामने प्रस्तुत कर सकें। संत प्रकरण विभाग का काम है संत घोषणा के लिए उम्मीदवारों के जीवन की जांच करना, उनके स्वभाव में सुसमाचार की विशेषताओं को खोजना, ताकि हर ख्रिस्ते उन्हें भरोसेमंद और सबसे बढ़कर अनुकरणीय गवाह के रूप में देख सकें। किसी संत घोषणा के पीछे एक वफादार सामूहिक कार्य होता है जो कभी कभी दशकों तक चला जाता है। वर्तमान में संत प्रकरण विभाग के प्रीफेक्ट हैं कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो, जबकि सचिव महाधर्माध्यक्ष फाबियो फाबेने हैं। सन 1969 में संत पापा पॉल छठवें ने प्रेरित संविधान साक्रारीतुम कांग्रीगासियो के साथ दिव्य उपासना और संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना की थी और उनके बीच पौत्र संस्कारों के धम्म संघ के कामों को बांटा था। 1983 के प्रेरित संविधान दिवीनुस पेरफेक्सियोने मजिस्टेर के साथ संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषणा के कारणों की प्रक्रिया में एक बड़ा सुधार किया और धम्म संघ की संरचना में बदलाव लाया, जिसे एक पर्यवेक्षक दिया गया जो ईश सेवकों की संत घोषणा की देखरेख करे। इसके बाद 1988 के प्रेरित संविधान पास्टर पोनुस के साथ इसका नाम बदलकर संतों के मामलों के लिए स्थापित धम्म संघ कर दिया गया। 2022 में प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम के साथ पोप फ्रांसिस ने इसका नाम संत प्रकरण विभाग कर दिया और 2025 के जुबली के अवसर पर पोप फ्रांसिस ने विभाग के अंदर नए शहीदों विश्वास के साक्ष्यों के आयोग का गठन किया, ताकि उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जा सके जिनमें दूसरे ख्रिस्त समुदाय के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने ख्रिस्त को मानने और उनके सुसमाचार की गवाही देने के लिए अपना खून बहाया। जैसा कि प्रेरित संविधान प्रेडिकाते एवेंजेलियम में बताया गया है, यह विभाग ईश सेवक की धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया की देखरेख करने, शहादत या वीरतापूर्ण सद्गुणों की जांच में विशप की मदद करने या किसी कैथोलिक विश्वासी के जीवन और चमत्कारों की पेशकश करने के लिए जिम्मेदार है। एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो ईश सेवक को चुना जाता है, जिसके लिए एक सच्चे विस्तृत और पक्की पौत्रता की जरूरत होती है, यानी यह आमराय कि उसका जीवन सरल ख्रिस्त सद्गुणों से भरपूर और ख्रिस्त समुदाय के लिए फायदेमंद था। 1983 में लाए गए संतों के मामलों के नए नियम ने धन्य घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया के समय को काफी कम कर दिया है। हालांकि संत घोषणा की अवधि कई बातों पर निर्भर करती है। अगर ये मामला सकारात्मक हो तो मामला विभाग के सदस्यों, कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों के आम सत्र में जाता है। आखिरी फैसला पोप का होता है, जिनकी मंजूरी से प्रीफेक्ट अलग अलग मामलों को सौंपता है। संतों के मामलों के लिए धम्म संघ की स्थापना के बाद से इन 56 सालों के आध्यात्मिक एवं प्रेरितिक संतुलन में 2020 तक 3,300 धन्य घोषणा और 1,479 संत घोषणाएं हुए हैं। हर साल आमतौर पर हर महीने 2 आम सत्र होते हैं और हर एक में 3 या 4 मामलों की जांच होती है। इस तरह एक साल में 70 से 80 मामले निपटाए जाते हैं। ईश प्रजा के बीच पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए लोकप्रियता के कारण धम्म प्रांत में जांच शुरू होती है। रोम लाए जाने के बाद एक पर्यवेक्षक को पोस्टुलेटर का मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि वह धम्म प्रांत में संग्रहित सबूतों का सारांश तैयार करे, जीवन की कहानी लिखे और ईश सेवक की पौत्रता एवं चमत्कारों के लिए उनकी तुलनात्मक ख्याति के साथ साथ शहादत का वर्णन करें। इस स्थिति का अध्ययन ईश शास्त्रों के एक दल द्वारा किया जाता है और यदि पुराना मामला हो जिसमें उम्मीदवार की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है तो इतिहासकारों के एक कमीशन द्वारा अध्ययन किया जाता है। अगर उनकी राय सही होती है, फाइल को विभाग के कार्डिनलों और धर्माध्यक्षों द्वारा आगे की जांच के लिए जमा किया जाता है।
अगर मंजूरी मिल जाती है तो पोप ख्रिस्त सद्गुणों या शहादत अथवा ईश सेवक के जीवन के समर्पण पर आज्ञाप्ति जारी करने की मंजूरी देते हैं। इस तरह वे आदरणीय बन जाते हैं। धन्य घोषणा संत घोषित करने की दिशा में बीज का चरण है। अगर उम्मीदवार को शहीद घोषित किया जाता है तो वे तुरंत धन्य हो जाते हैं, अन्यथा उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना से वे चमत्कार को मान्यता मिलनी चाहिए। चमत्कार पर ईश शास्त्र परामर्श के बाद पोप संबंधित आज्ञाप्ति को मंजूरी देते हैं। धन्य को संत घोषित करने के लिए उन्हें दूसरे चमत्कार में असरदार प्रार्थना का श्रेय मिलना चाहिए। धन्य घोषणा और संत घोषणा एक कार्तिक विश्वासी से जुड़ा है जिसने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद पौत्रता, शहादत या अपने जीवन के समर्पण के द्वारा प्रसिद्धि पाई हो। श्रोताओं, रवि पारे कार्यक्रम के अंतर्गत संत प्रकरण विभाग पर संक्षिप्त जानकारी सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका पलटती बाजी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिन्हें अपने ज्ञान, धन, संपदा, रंग रूप और सुंदरता पर बहुत ही घमंड होता है। अपने आगे दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। शादी के लिए लड़की देखने गए तो लड़की में कुछ न कुछ कमी निकाल करना पसंद कर ली। यही बात लड़की के लिए भी है। यदि शादी न करना चाहे तो लड़के में नुक्स निकाल कर खाली हाथ लड़के को वापस भेज दिया। कुछ लोगों को दूसरों का उपहास करना और उनको नीचा दिखाने में आनंद आता है। यदि आप भी लोगों को परेशान करने और नीचा दिखाने में आनंद लेते हैं तो इस बुरी आदत को बदल लें, क्योंकि जो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार उसके साथ भी किया जाएगा। बाजी पलटने में समय नहीं लगता। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका पलटती बाजी।
1: और क्या कर रही है मेरी बहना?
2: और क्या करना है पवन भैया, कॉलेज खुलने में अभी 15 दिन और हैं, सो टाइम पास कर रही हूँ।
1: तूने इकोनॉमिक्स में एमए तो कर ही लिया है, अब कॉलेज में किस विषय में एडमिशन लेना चाहती हो तुम?
2: अब मैं फिलॉसफी में एडमिशन लेना चाहती हूँ और फिलॉसफी में एमए करना चाहती हूँ।
1: लो बताओ, तुम आगे बढ़ना और पढ़ना भी चाहती हो तो किस विषय में? अरे जमाने के साथ चलो प्रीति, जमाने के साथ।
2: क्यों, फिलॉसफी में आगे बढ़ने में क्या बुराई है? जीवन और संसार के दर्शन के विषय में अपना अपना ज्ञान बढ़ाने में आखिर बुराई ही क्या है?
1: बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही बढ़ेगा और वो ज्ञान तुम्हारे किस काम आएगा प्रीति?
2: क्यों भैया, क्यों किसी काम नहीं आएगा? जीवन में दर्शन का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है।
1: देखो, अगर तुम मेरी बात सुनो तो कंप्यूटर वगैरह सीख लो और कुछ सोचो, तुम्हारे काम आएगा। ये दर्शन शास्त्र वगैरह जैसे सब्जेक्ट तो अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं।
2: क्या पवन भैया, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला ज्ञान पाने और ज्ञान बढ़ाने का भी कोई विषय आउट ऑफ फैशन होता है क्या?
1: लेकिन कुछ नया करने और नया सीखने में आखिर बुराई ही क्या है प्रीति? अच्छा प्रीति, तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ये तुम्हारे मनपसंद विषय पढ़कर आगे क्या करना चाहती हो?
2: देखो भैया, आपको एक बात तो मैं साफ बता दूं कि मैं पढ़ लिख कर कोई नौकरी वोकरी तो नहीं करने वाली हूँ।
1: फिर क्या करोगी तुम?
2: इतना तो तय है कि मैं नौकरी के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी।
1: तो मतलब ये कि नौकरी करने के बजाय तुम शादी करना अधिक पसंद करोगी?
2: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं।
1: अरे जब तुम्हें शादी ही करना है तो फिर ये आगे पढ़ने का झंझट क्यों?
2: तो आगे और पढ़ने में बुराई भी क्या है?
1: मेरा मतलब है कि जब तुम्हें नौकरी वगैरह नहीं करना है तो सीधे अपने किसी मनपसंद लड़के से शादी कर लो।
2: समय आने पर वो भी कर लूंगी भैया।
1: मगर मैंने तो अभी तक सिर्फ यही देखा है प्रीति, कि जब भी कोई लड़का तुम्हें देखने आता है तो सारी रस्म पूरी होने के बाद पता चलता है कि तुमने लड़के को तो नापसंद कर दिया है।
2: पवन भैया, अब अगर लड़का नापसंद होगा तो नापसंद ही तो किया जाएगा ना।
3: बेटी, अगर इस दुनिया में तुम लोगों में कमी ढूंढने जाओगी तो तुम्हें सभी लोगों में कोई ना कोई तो कमी मिल ही जाएगी।
2: अब कमी है या होगी तो मिलेगी ही पापा।
1: सुना पापा आपने, आपकी लड़की का क्या कहना है?
3: देखो बेटी, एक बात अच्छी तरह से समझ लो तुम, इस दुनिया में, इस धरती पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें कोई कमी या गलती ना हो।
2: कोई तो ऐसा होगा ना पापा?
3: बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, पूरा हो, जिसमें कोई कमी ही ना हो।
1: पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और फिर तुम दूसरों की गलतियाँ ढूंढती रहती हो। क्या तुम में कोई गलती नहीं है? क्या तुम एकदम परफेक्ट हो?
3: पवन बिल्कुल सही कह रहा है बेटी, हमें दूसरों में कमी या गलती देखने की बजाय पहले अपने आप में ही हमें इन अवगुणों को खोजना चाहिए, उससे दूर कर फिर औरों में हमें कमी ढूंढना चाहिए।
2: मगर शादी करके मुझे जीवन भर उसके साथ रहना है, तो क्या मैं अपनी पसंद का ध्यान भी ना रखूं?
3: वो भी तुम्हें एक सीमा तक ही रखना चाहिए बेटी, और फिर आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तब भी क्या तुम ऐसा ही करती? मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो और उसमें मेरी मदद करो बेटी।
4: प्रीति आओ आओ।
2: और क्या कर रही हो?
4: अरे ये बहुत दिनों से एक सलवार सूट काट कर रखा था, मैंने सोचा आज बैठकर सिल ही डालूं, पहनने को एक और सूट हो जाएगा।
2: हाँ यार, तुम्हारा ये अच्छा है, अच्छी कला सीख रखी है तुमने। टाइम का टाइम पास हो जाए और चीज की चीज तैयार हो जाए।
4: हाँ वो तो है। और सुनाओ कहाँ निकल पड़ी थी तुम?
2: कहाँ क्या निकल पड़ी, तुम्हारे पास ही तो आई हूँ यार।
4: चलो फिर आज दिन भर बैठकर यहीं खूब बातें करेंगे।
2: अरे नहीं यार, मैं दिन भर तो नहीं रुक पाऊंगी।
4: क्यों?
2: दरअसल मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ।
4: बोलो क्या काम है?
2: काम क्या है, वही ढपली वही राग। कल मुझे कोई लड़का फिर देखने आ रहा है।
4: अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कब आ रहा है वो?
2: वही शाम को।
4: और प्रीति तुम अब सीरियस हो जाओ। हाँ अगर लड़का सचमुच ही हर तरह से अच्छा हो तो मुझे ना मत कहना।
2: यार मेरी, तुम भी क्या बात कर रही हो, यही तो उम्र है मस्ती करने की और मजे लेने की, तो लेने दो जरा। शादी का क्या है, वो तो करनी है एक दिन।
4: कब कर लोगी तुम?
2: कर लेंगे यार।
4: देखो प्रीति, मेरी बात अलग है। मैंने तो जीवन भर शादी ना करने का फैसला किया है, मगर तुम तो शादी कर लो और यूं देखने आने वाले लड़के को परेशान करना बंद कर दो।
2: तुम भी क्या बात करती हो यार मेरी।
4: क्यों?
2: अरे जब मुझे लड़के को पसंद और नापसंद करने का हक है तो मैं अपने हक का इस्तेमाल क्यों ना करूं?
4: लेकिन तुमने तो अपने इस हक को अपनी मस्ती और अपने मनोरंजन का हथियार बना रखा है।
2: अरे तो इसमें बुराई क्या है यार, मजा आता है जब कोई मुझसे शादी के ख्याली पुलाव पकाता है और उसमें अपनी नापसंदगी का मसाला डालकर उनकी बाजी पलट दिया करती हूँ मैं।
4: लेकिन कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है बेटा।
2: तुम सब छोड़ो यार, और ये बताओ तुम कल शाम को आ रही हो ना?
4: नहीं यार, कल मुझे मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना है।
2: तो फिर ठीक है, मैं परसों तुमसे मिलकर पूरा आंखों देखा हाल बयान करती हूँ। ओके
4: ठीक है। आओ प्रीति आओ।
2: क्या कर रही हो?
4: कुछ नहीं, यूं ही बैठी थी। हाँ क्या तुम्हें कल लड़का देखने आया था ना, क्या हुआ उस मुंह दिखाई का?
2: अरे बात क्या बननी थी यार, छोड़ो।
4: अरे क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या कल तुम्हें मजा नहीं आया, या फिर तुम्हें उस लड़के को परेशान करने का मौका ही नहीं मिला?
2: इस बार मौका मुझे नहीं, सामने वाले उस लड़के को मिला था।
4: क्यों, ये क्या बात कर रही हो तुम?
2: हाँ मेरी, मेरे पवन भैया, पापा और तुम बिल्कुल ठीक कहा करते थे।
4: क्या ठीक कहा करते थे? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताती कि तुम्हें हुआ क्या है?
2: कल मेरे साथ वो हुआ है मेरी, जो अब तक मैं दूसरों के साथ करती आई हूँ।
4: मतलब उस लड़के ने?
2: हाँ उस लड़के ने मुझे नापसंद कर दिया। मुझे ये बताओ मेरी, मुझ में उस लड़के को क्या कमी नजर आई होगी?
4: ये तो तुम्हें बिना समझाए भी सब कुछ समझ सकती हो प्रीति। आज तक तुमने दूसरों को नापसंद करके परेशान किया है, आज किसी और ने तुम्हें नापसंद करके तुम्हें परेशान कर दिया।
2: जब मैं उसे पसंद ही नहीं थी तो फिर उसने मुझसे ऐसे सवाल जवाब ही क्यों किए कि मुझे उससे उम्मीद बनने लगी थी।
4: तुम्हें उससे उम्मीद बनने लगी थी, मतलब तुमने?
2: हाँ मेरी, मैंने उसे पसंद कर लिया था मगर उसने मुझे नापसंद कर दिया। अब मुझे उन नापसंद किए गए उन लोगों के दुख का एहसास हो रहा है।
4: देखो प्रीति, पसंद नापसंद तो अपनी जगह एक बात है, लेकिन उनसे अच्छा व्यवहार करना दूसरी बात। बाइबल में लिखा है कि तुम जैसा व्यवहार दूसरों से अपने लिए चाहते हो, वैसा ही व्यवहार तुम्हें भी उनके साथ करना चाहिए।
2: सच है, जो जैसा जिसके साथ करता है उसके साथ भी वही होता है। मैं दूसरों की बाजियां पलटा करती थी।
4: दूसरों को परेशान करने और उनके मजे लेने वालों के जीवन में बाजियां ऐसे ही पलटा करती हैं प्रीति। इसलिए किसी को परेशान करने से पहले, किसी की बाजी पलटने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए।
2: तुम बिल्कुल सही कहती हो मेरी।
0: पलटती बाजी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे डॉक्टर भावना प्रधान, पूजा केलकर, विजय पंडित और माइकल होजेस। इंदौर के सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।
5: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेतरस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए।

0: प्रार्थना कर,
1: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: अति पवित्र माला की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर,
1: शांति की महारानी,
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें का ख्रिस्त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। कलीसिया के महान प्रेरित एवं रोम के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर 29 जून को पोप लियो 14वें ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में समारोह ख्रिस्त्याग अर्पित किया तथा विश्व भर के 35 नए महाधर्म दक्षों को पालियों प्रदान की।

0: संत पापा ने अपने उपदेश में संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की विशेषता बतलाते हुए महाधर्म अध्यक्षों को उनके समान बनने की प्रेरणा दी। अपने उपदेश में उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज एक ही महापर्व में हम रोम शहर एवं धर्म प्रांत के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की याद कर रहे हैं। एक को यीशु ने अपने झुंड के चरवाहे के रूप में चुना था और दूसरे को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में। उनमें हम कलीसिया के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं। संत पेत्रुस की याद करते हुए पोप लियो ने कहा, संत पेत्रुस ईश प्रजा के रखवाले, जिन्हें नए व्यवस्थान में अक्सर भाइयों के बीच मेल मिलाप बनाए रखने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। वे ही हैं जो गलीलिया सागर पर रात भर की व्यर्थ मेहनत के बाद प्रभु से कहते हैं, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। फिर वे दूसरों को अपने साथ लेकर नाव पर निकल पड़ते हैं। जब बहुत से लोग जीवन की रोटी पर कठिन बातचीत के बाद प्रभु से दूर हो रहे थे, तब वे ही थे जो प्रभु से कहते हैं, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और वे अन्य 11 प्रेरितों के साथ वहीं रह जाते हैं। कैसरिया में वे ही यीशु को ईश्वर के पुत्र मानते हैं। और जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, एक विश्वास को व्यक्त करते हुए सभी की तरफ से बोलते हैं। पुनरुत्थान के बाद भी झील के किनारे पेत्रुस सबसे पहले यीशु के पास पहुंचते हैं, पानी में कूद जाते और दूसरों से आगे तैरते हैं, ताकि वे नम्रता से अपने प्यार को पुनः व्यक्त करते हुए अपने मिशन की पुष्टि कर सकें। पेत्रुस इस मिशन के प्रति तब भी वफादार रहते हैं, उदाहरण के लिए जब यरूशलेम में बिना खतने वाले गैर यहूदियों को बपतिस्मा लेने वालों में शामिल करने के सवाल पर समुदाय में फूट पड़ने का खतरा होता है। वे भाइयों को इकट्ठा करते, उनकी बात सुनते और अंत में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी एकता बनाए रखता और ईश्वर की समस्त प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। वास्तव में वे कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा से बच जाएंगे जैसे वे बच जाएंगे। इसके बावजूद संत पापा ने पेत्रुस के कमजोर पक्ष पर गौर करते हुए कहा कि इस उदारता का मतलब यह नहीं है कि पेत्रुस पूर्ण है। दुख भोग के दौरान वे प्रभु को अस्वीकार करते हैं और बाद में वे सच्चा पछतावा करते हैं। खुद पौलुस भी विभिन्न परिस्थितियों में उनके कुछ कामों में गड़बड़ी के लिए उन्हें डांटते हैं, लेकिन पेत्रुस अपनी गलतियों को स्वीकार करना और पछतावा करना जानते हैं। बिना निराश हुए और सुसमाचार का प्रचार करने एवं मसीह के झुंड को एकत्रित करने के अपने मिशन में नाकाम हुए बिना, यहाँ तक कि शहीद होकर भी, जिसको उन्हें यहाँ रोम में झेलना पड़ा, जो हम जहाँ एकत्रित हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है। एकता के इस भरोसेमंद और धैर्यपूर्ण चिंता को कुंजियों के प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके साथ हम अक्सर पेत्रुस की पहचान करते हैं। कुंजी दरवाजों को तोड़ती नहीं, बल्कि यह बेहतर उचित उत्तोलक ढूंढकर और उसकी गतिविधियों को संचालित करके उन्हें खोलती और बंद करती है, ताकि ताले खुल सकें और दरवाजे अपने कब्जों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जिससे कमरे एक साथ जुड़ सकें और कई अलग अलग स्थानों को एक स्वागत योग्य घर में बदला जा सके। उसी प्रकार कलीसिया के भीतर सहभागिता लोगों की अपनी स्थिति से सख्ती से चिपके रहने से नहीं बनती, बल्कि सभी दिलों में सच्चाई से मुलाकात करने के बिंदुओं की तलाश करने से बनती है, जिसके प्रकाश में ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के विकास का साधन बनता है। इसी आलोक में हम प्रभु द्वारा पेत्रुस और उनके उत्तराधिकारियों को ईश्वर के संपूर्ण पौत्र प्रजा के हित सौंपे गए मिशन की व्याख्या कर सकते हैं। अपने भाइयों और बहनों को सिखाना, हिम्मत देना, समझाना और उनका साथ देना, ताकि वे एक ही आत्मा के काम के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे और पूरी मानव जाति के उद्धार में साथ दे सकें। इसके अलावा पेत्रुस का उदाहरण हर ख्रिस्ते को एकता बनाए रखने, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने और अपने भाइयों एवं बहनों के करीब आने और उनकी परिस्थितियों एवं जरूरतों पर ध्यान देने का निमंत्रण है। इस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखते हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार पूरी तरह से किया जा सके। इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बारे बतलाते हुए कहा, यह संत पौलुस की भी शिक्षा है जिनका आज हम महापर्व मना रहे हैं और जो सुसमाचार के अथक संदेश वाहक हैं, उनके भी कुछ खास चिन्ह हैं, किताब और तलवार जो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक इसे अच्छी तरह से समझाते हैं जब वे लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंततम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संत पापा ने कहा, यही ईश्वर ने युवा साउल के दिल में पूरी की। उन्हें जीतकर पहले सुसमाचार के प्रति मन परिवर्तन कराया और उसे एक नया नाम दिया और उन्हें फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने के लिए भेजा, जिन्हें संत पेत्रुस की तरह इसी शहर में अपनी जान देकर सुसमाचार की गवाही देनी पड़ी। संत अगस्टीन संत पौलुस के मन परिवर्तन एवं प्रेरिताय पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जब वे धमकियों एवं हत्याओं से भरे दिल के साथ दमिश्क जा रहे थे तो उन्हें नाम से पुकारा गया। एक स्वर्गीय वाणी ने उन्हें भूमि पर गिरा दिया, यानी उस वचन ने उन्हें बुलाया। और वे आगे कहते हैं, ईश्वर ने कलीसिया के सताने वाले को चुना और उन्हें शांति का संदेश वाहक बना दिया। उसने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और उन्हें एक ऐसी प्रेरिताई के लिए नियुक्त किया जहां वे दूसरों के पाप क्षमा कर सकें। संत पापा ने उपस्थित कार्डिनलों एवं धर्माध्यक्षों को संबोधित कर कहा, प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दो संतों पेत्रुस और पौलुस की ओर देखें ताकि हम यह समझ सकें कि हम कैसे एकता के प्रेरित और निर्माता एवं उदारता में सत्य के उदार सेवक बन सकते हैं। पोप ने आगे कहा, इसी भावना के साथ हम महाधर्माध्यक्षों को पाल्य प्रदान करने के प्राचीन एवं मार्मिक अनुष्ठान को मनाने वाले हैं। क्रूस से सजे सफेद उनके ये पट्टे वास्तव में हर चरवाहे की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और हर ख्रिस्ते की भी। ईश्वर के झुंड के कई मेमनों की तरह उन्हें सौंपे गए भाइयों एवं बहनों को अपने कंधे पर लेने के लिए और उनके लिए अपनी शक्ति, समय, प्रयास और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और पूरी दुनिया इसमें सद्भाव एवं सामंजस्य पा सके। और अंत में संत पापा ने कुस्तुंतुनिया से आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर कहा, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कुस्तुंतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का दिल से अभिवादन करता हूँ, जिन्हें मेरे प्यारे भाई प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो ने भेजा है और जिसका नेतृत्व खलदेई महाधर्माध्यक्ष इमानुएल एडमाकिस कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हुए पोप लियो ने कहा, आइए हम संत पेत्रुस एवं पौलुस से प्रार्थना करें कि वे हमें मुक्तिदाता के पद चिन्हों पर हमारी एकता की यात्रा में हमारा साथ दें। यही वह रास्ता है जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, वही जिसके लिए उन्होंने अंतिम बिहारी में पिता से प्रार्थना की थी और वह लक्ष्य जिसके लिए उन्होंने हमें पक्की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना सिखाया है।
1: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थ यात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा, आज हम रोम के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस का महोत्सव मना रहे हैं। यह त्यौहार उस असली बंधन को याद दिलाता है जो रोम की कलीसिया को दुनिया भर की दूसरी कलीसियाओं के साथ विश्वास और प्यार की एकता में जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में इन दो प्रेरितों की गवाही एक सील का पत्थर है। इस शहर में उन्होंने जो खून बहाया वह ईश्वर के उस प्यार की गवाही को दिखाता है जो प्रभु येसु ने हमें दिया है। यह उनके वचन और उनकी शहादत से ही है कि ख्रीस्त का सुसमाचार एक तरह से रोम में जड़ जमा चुकी है। यहीं इसी राजधानी में ईश्वर के नए ज्ञान और हर इंसान की अनंत गरिमा के जरिए नवीनीकरण की अपनी शक्ति को दिखाता है। शक्ति की एक नई पहल प्रभुत्व के तौर पर नहीं बल्कि मानव जीवन की सेवा के तौर पर। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस और पौलुस एक दूसरे से बहुत अलग थे। उनकी पृष्ठभूमि, परवरिश और स्वभाव भी अलग थे, न सिर्फ बुलाए जाने से पहले बल्कि बुलाए जाने के बाद भी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक जैसा नहीं बनाया था। पेत्रुस और पौलुस ने सुसमाचार को समझा, हर एक की अपनी अलग अलग आवाज में इसका प्रचार किया और पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के लेखकों को प्रेरित करते हुए नहीं चाहा कि उनके अंतर छिपे रहें। ये अंतर हमें अच्छी खबर के तौर पर दिखाए गए हैं। संत पापा ने कहा कि प्रेरितों की मंडली में पेत्रुस और पौलुस एक तरह से उन कई अलग अलग चीजों की निशानी बन गए जिन्हें एक आत्मा पूर्णता से जोड़ती है। इस तरह रोम की कलीसिया के संरक्षक संतों ने मेल जोल की चुनौतियों का अनुभव किया। वे इसे जानते थे, इसकी सेवा करते थे और इसे दिव्य जीवन का संस्कार मानते थे। उनकी गवाही ने यह पक्का करने में अहम योगदान दिया है कि इतिहास में ख्रिस्तियों की उपस्थिति राज करने की तरफ से नहीं बल्कि सेवा, एकता और मेल मिलाप की तरफ से हो। देवदूत प्रार्थना करने के बाद संत पापा ने कहा, आज हम संत पेत्रुस पेंस दिवस अर्थात दान दिवस मना रहे हैं। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो पेत्रुस के उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे काम को अपने दान द्वारा समर्थन करते हैं। आइए हम विश्वास और मेल जोल के साथ साथ चलते रहें। संत पापा ने रोम के संरक्षक संतों के त्यौहार पर रोम के लोगों और इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने खासकर बीमारों, अकेले लोगों और कैदियों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने पल्ली पुरोहितों, रोम में काम करने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संघियों का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वे अपनी मौजूदगी और दैनिक सेवा द्वारा महान ख्रिस्तीय दिल को जिंदा रखते हैं। फिर संत पापा ने प्रो लोको दी इतालिया के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दिन विया देला कोंचिलिया सियोने और पियाजा पियो 12वें में अनेक सुंदर अल्पना बनाए हैं। संत पापा ने गिरांडोला दी कास्तेल संत आंजेलो का भी शुक्रिया अदा किया जो इस साल संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह पर संत फ्रांसिस और सृष्टि को प्रकट करते हुए अल्पना बनाया। अंत में संत पापा ने उन बेघर लोगों का अभिवादन किया जो आज संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ओजरवा तोरे दी स्ट्रादा अखबार बांटने आए हैं। यह ओजरवातोरे रोमानो अखबार का पूरक है। इस समाचार पत्र का समर्थन करने वालों को संत पापा ने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी और अंत में सभी को गर्मी की छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। और रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा लियो 14वें ने स्पानी भाषा में वेनेजुएला के प्रति अपनी नजदीकी जाहिर की, जहाँ इस हफ्ते एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। उन्होंने सभी को पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साथ बचाव दल के काम के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, मैं हाल के भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के बहनों और भाइयों के प्रति अपनी नज़दीकी जाहिर करता हूँ। भूकंप की वजह से कई लोग पीड़ित और घायल हुए हैं। साथ ही बहुत सारा सामान भी बर्बाद हुआ है। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और इस दुखद घटना के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाती हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस प्यारे देश के प्रति एकजुटता में कमी ना लाए। बचाव दल ला गुएरा में मलबा निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। शनिवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,500 हो गई थी और लगभग 70,000 लोग अभी भी लापता हैं। संत पापा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए तुरंत 1,00,000 यूरो का शुरुआती दान भेजा। और संत पापा लियो 14वें ने 26 और 27 जून तक वाटिकन में हुई असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उम्मीद, सहभागिता, युद्ध और इंसानी रिश्तों में संकट से जूझ रही दुनिया में कलीसिया की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया। संत पापा ने कहा, हमने प्रभु की इच्छा को एक साथ खोजा है, आश्वस्त किया है कि मसीह अपनी कलीसिया में कार्य करना जारी रखते हैं। ये वे ही हैं जो हमारे सामने जाते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, हमारे भाइयों के माध्यम से बोलते हैं और हमें मिशन में ले जाते हैं। सब कुछ उसी से आता है और सब कुछ उसी में लौट जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpetro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर पोप लियो 14वें का ख्रिस्त्याग प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। कलीसिया के महान प्रेरित एवं रोम के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व के अवसर पर 29 जून को पोप लियो 14वें ने वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर में समारोह ख्रिस्ताग अर्पित किया तथा विश्वभर के 35 नए महाधर्म दक्षिणों को पालियों प्रदान की।

0: संत पापा ने अपने उपदेश में संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की विशेषता बतलाते हुए महाधर्म अध्यक्षों को उनके समान बनने की प्रेरणा दी। अपने उपदेश में उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज एक ही महापर्व में हम रोम शहर एवं धर्म प्रांत के संरक्षक संत पेत्रुस एवं संत पौलुस की याद कर रहे हैं। एक को यीशु ने अपने झुंड के चरवाहे के रूप में चुना था और दूसरे को गैर यहूदियों के प्रेरित के रूप में। उनमें हम कलीसिया के दो स्तंभों का सम्मान करते हैं। संत पेत्रुस की याद करते हुए पोप लियो ने कहा, संत पेत्रुस ईश प्रजा के रखवाले, जिन्हें नए व्यवस्थान में अक्सर भाइयों के बीच मेल मिलाप बनाए रखने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। वे ही हैं जो गलीलिया सागर पर रात भर की व्यर्थ मेहनत के बाद प्रभु से कहते हैं, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। फिर वे दूसरों को अपने साथ लेकर नाव पर निकल पड़ते हैं। जब बहुत से लोग जीवन की रोटी पर कठिन बातचीत के बाद प्रभु से दूर हो रहे थे, तब वे ही थे जो प्रभु से कहते हैं, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। और वे अन्य 11 प्रेरितों के साथ वहीं रह जाते हैं। कैसरिया में वे ही यीशु को ईश्वर के पुत्र मानते हैं और जैसा कि हमने सुसमाचार में सुना, एक विश्वास को व्यक्त करते हुए सभी की तरफ से बोलते हैं। पुनरुत्थान के बाद भी झील के किनारे पेत्रुस सबसे पहले यीशु के पास पहुंचते हैं, पानी में कूद जाते और दूसरों से आगे तैरते हैं, ताकि वे नम्रता से अपने प्यार को पुनः व्यक्त करते हुए अपने मिशन की पुष्टि कर सकें। पेत्रुस इस मिशन के प्रति तब भी वफादार रहते हैं, उदाहरण के लिए जब यरूशलेम में बिना खतने वाले गैर यहूदियों को बपतिस्मा लेने वालों में शामिल करने के सवाल पर समुदाय में फूट पड़ने का खतरा होता है, वे भाइयों को इकट्ठा करते, उनकी बात सुनते और अंत में पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी एकता बनाए रखता और ईश्वर की समस्त प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है। वास्तव में वे कहते हैं, हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा से बच जाएंगे जैसे वे बच जाएंगे। इसके बावजूद संत पापा ने पेत्रुस के कमजोर पक्ष पर गौर करते हुए कहा कि इस उदारता का मतलब यह नहीं है कि पेत्रुस पूर्ण है। दुख भोग के दौरान वे प्रभु को अस्वीकार करते हैं और बाद में वे सच्चा पछतावा करते हैं। खुद पौलुस भी विभिन्न परिस्थितियों में उनके कुछ कामों में गड़बड़ी के लिए उन्हें डांटते हैं, लेकिन पेत्रुस अपनी गलतियों को स्वीकार करना और पछतावा करना जानते हैं। बिना निराश हुए और सुसमाचार का प्रचार करने एवं मसीह के झुंड को एकत्रित करने के अपने मिशन में नाकाम हुए बिना, यहाँ तक कि शहीद होकर भी, जिसको उन्हें यहाँ रोम में झेलना पड़ा, जो हम जहाँ एकत्रित हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं है। एकता के इस भरोसेमंद और धैर्यपूर्ण चिंता को कुंजियों के प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके साथ हम अक्सर पेत्रुस की पहचान करते हैं। कुंजी दरवाजों को तोड़ती नहीं, बल्कि यह भीतर उचित उत्तोलक ढूंढकर और उसकी गतिविधियों को संचालित करके उन्हें खोलती और बंद करती है, ताकि ताले खुल सकें और दरवाजे अपने कब्जों पर स्वतंत्र रूप से घूम सकें, जिससे कमरे एक साथ जुड़ सकें और कई अलग अलग स्थानों को एक स्वागत योग्य घर में बदला जा सके। उसी प्रकार कलीसिया के भीतर सहभागिता लोगों की अपनी स्थिति से सख्ती से चिपके रहने से नहीं बनती, बल्कि सभी दिलों में सच्चाई से मुलाकात करने के बिंदुओं की तलाश करने से बनती है, जिसके प्रकाश में ही प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के विकास का साधन बनता है। इसी आलोक में हम प्रभु द्वारा पेत्रुस और उनके प्राधिकारियों को ईश्वर के संपूर्ण पौत्र प्रजा के हित सौंपे गए मिशन की व्याख्या कर सकते हैं। अपने भाइयों और बहनों को सिखाना, हिम्मत देना, समझाना और उनका साथ देना, ताकि वे एक ही आत्मा के काम के प्रति समर्पित होकर एक दूसरे और पूरी मानव जाति के उद्धार में साथ दे सकें। इसके अलावा पेत्रुस का उदाहरण हर ख्रिस्ते को एकता बनाए रखने, ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखने और अपने भाइयों एवं बहनों के करीब आने और उनकी परिस्थितियों एवं जरूरतों पर ध्यान देने का निमंत्रण है। इस तरह हम एक दूसरे के साथ प्यार करना सीखते हैं ताकि सुसमाचार का प्रचार पूरी तरह से किया जा सके। इसके बाद संत पापा ने संत पौलुस के बारे बतलाते हुए कहा, यह संत पौलुस की भी शिक्षा है जिनका आज हम महापर्व मना रहे हैं और जो सुसमाचार के अथक संदेश वाहक हैं, उनके भी कुछ खास चिन्ह हैं, किताब और तलवार जो एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हैं। इब्रानियों के नाम पत्र के लेखक इसे अच्छी तरह से समझाते हैं जब वे लिखते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंततम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों एवं विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। संत पापा ने कहा, यही ईश्वर ने युवा साउल के दिल में पूरी की। उन्हें जीतकर पहले सुसमाचार के प्रति मन परिवर्तन कराया और उसे एक नया नाम दिया और उन्हें फिर पूरी दुनिया में इसका प्रचार करने के लिए भेजा, जिन्हें संत पेत्रुस की तरह इसी शहर में अपनी जान देकर सुसमाचार की गवाही देनी पड़ी। संत अगस्टीन संत पौलुस के मन परिवर्तन एवं प्रेरिता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, जब वे धमकियों एवं हत्याओं से भरे दिल के साथ दमिश्क जा रहे थे तो उन्हें नाम से पुकारा गया। एक स्वर्गीय वाणी ने उन्हें भूमि पर गिरा दिया, यानी उस वचन ने उन्हें बुलाया। और वे आगे कहते हैं, ईश्वर ने कलीसिया के सताने वाले को चुना और उन्हें शांति का संदेश वाहक बना दिया। उसने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए और उन्हें एक ऐसी प्रेरिताई के लिए नियुक्त किया जहां वे दूसरों के पाप क्षमा कर सकें। संत पापा ने उपस्थित कार्डिनलों एवं धर्माध्यक्षों को संबोधित कर कहा, प्रिय मित्रों, आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इन दो संतों पेत्रुस और पौलुस की ओर देखें ताकि हम यह समझ सकें कि हम कैसे एकता के प्रेरित और निर्माता एवं उदारता में सत्य के उदार सेवक बन सकते हैं। पोप ने आगे कहा, इसी भावना के साथ हम महाधर्माध्यक्षों को पाल्य प्रदान करने के प्राचीन एवं मार्मिक अनुष्ठान को मनाने वाले हैं। क्रूस से सजे सफेद उनके ये पट्टे वास्तव में हर चरवाहे की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और हर ख्रिस्ते की भी। ईश्वर के झुंड के कई मेमनों की तरह उन्हें सौंपे गए भाइयों एवं बहनों को अपने कंधे पर लेने के लिए और उनके लिए अपनी शक्ति, समय, प्रयास और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और पूरी दुनिया इसमें सद्भाव एवं सामंजस्य पा सके। और अंत में संत पापा ने कुस्तुंतुनिया से आए प्रतिनिधियों को संबोधित कर कहा, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कुस्तुंतुनिया के ख्रिस्ते एकता प्राधिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का दिल से अभिवादन करता हूँ, जिन्हें मेरे प्यारे भाई प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो ने भेजा है और जिसका नेतृत्व खलदेई महाधर्माध्यक्ष इमानुएल एडमाकिस कर रहे हैं। प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हुए पोप लियो ने कहा, आइए हम संत पेत्रुस एवं पौलुस से प्रार्थना करें कि वे हमें मुक्तिदाता के पद चिन्हों पर हमारी एकता की यात्रा में हमारा साथ दें। यही वह रास्ता है जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, वही जिसके लिए उन्होंने अंतिम बिहारी में पिता से प्रार्थना की थी और वह लक्ष्य जिसके लिए उन्होंने हमें पक्की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना सिखाया है।
1: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.

0: आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में तीर्थ यात्रियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा, आज हम रोम के संरक्षक संत पेत्रुस और पौलुस का महोत्सव मना रहे हैं। यह त्यौहार उस असली बंधन को याद दिलाता है जो रोम की कलीसिया को दुनिया भर की दूसरी कलीसियाओं के साथ विश्वास और प्यार की एकता में जोड़ता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार में इन दो प्रेरितों की गवाही एक सील का पत्थर है। इस शहर में उन्होंने जो खून बहाया वह ईश्वर के उस प्यार की गवाही को दिखाता है जो प्रभु येसु ने हमें दिया है। यह उनके वचन और उनकी शहादत से ही है कि ख्रीस्त का सुसमाचार एक तरह से रोम में जड़ जमा चुकी है। यहीं इसी राजधानी में ईश्वर के नए ज्ञान और हर इंसान की अनंत गरिमा के जरिए नवीनीकरण की अपनी शक्ति को दिखाता है। शक्ति की एक नई पहल प्रभुत्व के तौर पर नहीं बल्कि मानव जीवन की सेवा के तौर पर। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस और पौलुस एक दूसरे से बहुत अलग थे। उनकी पृष्ठभूमि, परवरिश और स्वभाव भी अलग थे, न सिर्फ बुलाए जाने से पहले बल्कि बुलाए जाने के बाद भी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक जैसा नहीं बनाया था। पेत्रुस और पौलुस ने सुसमाचार को समझा, हर एक की अपनी अलग अलग आवाज में इसका प्रचार किया और पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के लेखकों को प्रेरित करते हुए नहीं चाहा कि उनके अंतर छिपे रहें। ये अंतर हमें अच्छी खबर के तौर पर दिखाए गए हैं। संत पापा ने कहा कि प्रेरितों की मंडली में पेत्रुस और पौलुस एक तरह से उन कई अलग अलग चीजों की निशानी बन गए जिन्हें एक आत्मा पूर्णता से जोड़ती है। इस तरह रोम की कलीसिया के संरक्षक संतों ने मेल जोल की चुनौतियों का अनुभव किया। वे इसे जानते थे, इसकी सेवा करते थे और इसे दिव्य जीवन का संस्कार मानते थे। उनकी गवाही ने यह पक्का करने में अहम योगदान दिया है कि इतिहास में ख्रिस्तियों की उपस्थिति राज करने की तरफ से नहीं बल्कि सेवा, एकता और मेल मिलाप की तरफ से हो। देवदूत प्रार्थना करने के बाद संत पापा ने कहा, आज हम संत पेत्रुस पेंस दिवस अर्थात दान दिवस मना रहे हैं। मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो पेत्रुस के उत्तराधिकारी के तौर पर मेरे काम को अपने दान द्वारा समर्थन करते हैं। आइए हम विश्वास और मेल जोल के साथ साथ चलते रहें। संत पापा ने रोम के संरक्षक संतों के त्योहार पर रोम के लोगों और इस शहर में रहने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। संत पापा ने खासकर बीमारों, अकेले लोगों और कैदियों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने पल्ली पुरोहितों, रोम में काम करने वाले पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म संघियों का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि वे अपनी मौजूदगी और दैनिक सेवा द्वारा महान ख्रिस्तीय दिल को जिंदा रखते हैं। फिर संत पापा ने प्रो लोको दी इटालिया के स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस दिन विया देला कोंचिलिया सियोने और पियाजा पियो 12वें में अनेक सुंदर अल्पना बनाए हैं। संत पापा ने गिरांडोला दी कास्टेल संत एंजेलो का भी शुक्रिया अदा किया जो इस साल संत फ्रांसिस असीसी की मृत्यु की 800वीं सालगिरह पर संत फ्रांसिस और सृष्टि को प्रकट करते हुए अल्पना बनाया। अंत में संत पापा ने उन बेघर लोगों का अभिवादन किया जो आज संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में ओजरवा तोरे दी स्ट्रादा अखबार बांटने आए हैं। यह ओजरवातोरे रोमानो अखबार का पूरक है। इस समाचार पत्र का समर्थन करने वालों को संत पापा ने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी और अंत में सभी को गर्मी की छुट्टियों की शुभकामनाएं दी। और रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संत पापा लियो 14वें ने स्पानी भाषा में वेनेजुएला के प्रति अपनी नजदीकी जाहिर की जहाँ इस हफ्ते एक के बाद एक दो बड़े भूकंप आए। उन्होंने सभी को पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ साथ बचाव दल के काम के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, मैं हाल के भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला के बहनों और भाइयों के प्रति अपनी नज़दीकी जाहिर करता हूँ। भूकंप की वजह से कई लोग पीड़ित और घायल हुए हैं। साथ ही बहुत सारा सामान भी बर्बाद हुआ है। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और इस दुखद घटना के नतीजों से जूझ रहे सभी लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का भरोसा दिलाते हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस प्यारे देश के प्रति एकजुटता में कमी न लाए। बचाव दल ला गुएरा में मलबा निकालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। शनिवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,500 हो गई थी और लगभग 70,000 लोग अभी भी लापता हैं। संत पापा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद के लिए तुरंत 1,00,000 यूरो का शुरुआती दान भेजा। और संत पापा लियो 14वें ने 26 और 27 जून तक वाटिकन में हुई असाधारण कंसिस्ट्री के अंत में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उम्मीद, सहभागिता, युद्ध और इंसानी रिश्तों में संकट से जूझ रही दुनिया में कलीसिया की जिम्मेदारी पर ध्यान दिया। संत पापा ने कहा, हमने प्रभु की इच्छा को एक साथ खोजा है, आश्वस्त किया है कि मसीह अपनी कलीसिया में कार्य करना जारी रखते हैं। ये वे ही हैं जो हमारे सामने जाते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, हमारे भाइयों के माध्यम से बोलते हैं और हमें मिशन में ले जाते हैं। सब कुछ उसी से आता है और सब कुछ उसी में लौट जाता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।